0: வைங்க, பாதுகாப்பு கவசம் கிடைச்சிடுமே. இயற்கை பேரிடரோ இல்ல வேறு ஏதோ பயிர் பாதிப்போ, அந்த கவலைய நீங்களும் தானே விட்டொழிங்க.
1: பிஎம் ஃபசல் யோஜனா से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले
2: हैं। यहाँ पे रश्मि प्रभा आप मावटों त्रिकोजल का पकतले बड़कमली ग्राम तो अच्छी करो अंजी एक अर्थ की युवती आयरो आगे रखो की युवती मेरी युवती नाला अंडे को मगनो तो और वो तभी आप इतना उनका समय मावर के कल का उम्र अंडी कर के इलाज वाला वाला वर्ष भी ये आरोड़ बन गया ना
3: कारीफ पायर कापी टीर के वेरे विल पति विषय यंगल
4: की किलेगल कापी टीनर वडम विवसाय कारण कुरु पदे सेवे मयंगले तोड़ बुकलगुम अल्लद
3: பயிர் காப்பீடு தொடர்பான தகவல்களுக்கு ஹெல்ப்லைன் எண் 1447 அழைக்கவும்.
0: பயிர் காப்பீடு செய்யுங்க, பாதுகாப்பு கவசம் கிடைச்சிடுமே.
5: ஆகாஷவாணி கோயம்புத்தூர் வானொலி நிலையம், நேரம் மாலை 6:41. நேயர்களே, இப்பொழுது முல்லைவனம் கேட்கலாம். திரையிசை பாடல்கள். முதலில் முதல்வன் திரைப்படத்திற்காக ஹரிஹரன் மகாலட்சுமி ஐயரின் குரல் வண்ணத்தில்